गावन तुदनो इंदर इंदरासन बैठे देवते अंदर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति

गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले। गावन तुदनो रतन उपाये तेरे आठ साठ तीरथ नाले। गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे। गावन तुदनो खांड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। सेई तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले।

रहाओ। सब सुरती मिलो सुरत कमाई, सब कीमत मिलो कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई।

तू सबने त्याया, जिसनो कृपा कर तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब अकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ।

तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे।

कहियत हो जगत गोर स्वामी, हम कहियत काल जोग के कामी। हे गरीब निवाज, मेनू कोई सोझी नहीं जे, मेनू कोई ज्ञान नहीं जे, मैं कुछ भी नहीं जे जानदा। तुसी जगत दे मालक हो ते असी कलयुग दे कामी पुरश हां। पैज तुसा ने सवारनी है, हम कहियत कल जोग के कामी। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, काम क्रोध हंकार इन्हां पंजा ने मेरे अंदर नू खराब कर दिता है, मेरे अंदर नू टुकड़े टुकड़े कर दिता है। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, पल पल हार जीते अंतर पारियो। थोड़े थोड़े समय विच मैनू दोखी दई जांदे ने, दोखी दई जांदे ने। काम जांदा है, क्रोध आ जांदा है, क्रोध जांदा है, काम आ जांदा है, काम जांदा है, हंकार आ जांदा है, हंकार जांदा है, मोह आ जांदा, मोह जांदा है, हंकार आ जांदा है। पातशाह पल पल विच खराब करी जांदे ने। पल पल हार जीते अंतर पारियो, जत देखो तत दुख की राशी। अजो ना पति आए निगम भई साखी। कहिंदे अजे मन नहीं पतीजदा भई नेकां ही साखियां, नेकां ही दृष्टांत साडे कोल ने, पर मन फिर इन्हां विकारां विच डुब जांदा है। अजो ना पति आए निगम भई साखी, गौतम नार उमापत स्वामी, सहस धरन सीस पग घामी। इन दूतन खल बद कर मारियो, बड़ो निलाज अजू नहीं हारियो। कहो रविदास कहां कैसे कीजै, बिन रघुनाथ शरण का की लीजै। हे मेरे रमे होए राम जी, तुहाथों बिना मैं की दी टेक लवां। ये मनमुखां दी बात है, गुरमुख गुरु दे चरणा च बेनती करदा है, महाराज तुहाथों बिना मेरा सहारा कोई नहीं है। बोल साहबाने बख्शे ने, मनमुख बोल ना जाननी, उन्हां अंदर काम क्रोध अहंकार। अगले बोल था।

ठगियां करके धोखे करके पापा बाजो होवे नाही मोया सार न जाई। मार केंदे बलवंच करके ध्रोह करके ठगी मार के धाड़वी करके बड़े उपाव करदा है माया हे राणिया माया नू कठिया कर लवा। पर गरीब निवास सचे पातशाह जी केंदे चेता रखी ये कुछ करते रहा है पर गुरु की बाणी दे अमृत शब्द तेरी सुरत विच रहण बहो पर पंच कर पार तन लिहावै। बड़ा उपाव कीता है बड़ा जतन कीता है लै भी आंदा कोई वड्डी गल नहीं है। बहु पर पंच कर पार धन लियावै सुत दारा पै आन लुटावा मन मेरे भूले कपट न कीजै अंतन बेरा तेरे जी पाह लीजै। छिन छिन तन शिजै थोड़े थोड़े समय विच शरीर कमजोर ही हुंदा है छिन छिन तन शिजै जरा बुढ़ेपा जनावै जनारे भी बुढ़ेपा आ गया है। छिन छिन तन छिजै जरा जनावै तब तेरी ओक बुक पानी दा भर दो पींदे हो। महाराज कहिंदे होर ते गल छड़ दे किसे ने बुक भर के चूला भर के भी तेनू पानी नहीं हूं पिओना तरसदा रवेगा ही। तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावै कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की ना जपै सवेरा सदा जपया कर सतनाम श्री वाहिगुरु। जमकाल निहाले सास आवकट बेतालिया। बेताला जिस वेले गुरु के कीर्तनीय सिंह साहबान जी बहुत प्यार विच कीर्तन सरवण कराउंदे ने अचानक किसे वेले तपले वाला वीर अणजाण होवे ओ ताल जिहड़ी उहदी उखड़ जांदी है फिर एकदम रागी सिंघां दी निगाह जिहड़ी तपले वाले वाले जांदी है उहनूं दसदे ने। मैं कई बार कीर्तन मेरी आदत है भी सुनदे रहना आ ताल वजा बेताला काम हो जांदा है ते जदों बेताला हो जांदा है उदों रस जिहड़ा है उह बेरसा हो जांदा है। महाराज तेवें कह रहे ने कहिंदे बेताला हो गया जीवन दा रस खत्म हो गया इहदा नाम दा रस नहीं लै रहा इस गल नूं सोझ ही नहीं पै रही आव घट है उमरा घट रही है। जमकाल निहाले सास ते जम जिहड़ा सुआसा नूं वेख रहा है। एक शब्द तुहानूं याद आ जाणा जे रागी सिंघण वैसे शब्द याद हुंदे ने बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया दस मास माता उधर राखिया बौर लागी माया प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया पूर्व जन्म कर्म भोम बीज ना ही बोया बारक ते बिरद भया हो ना सो होया। जीवन की आस करे जम निहार ससा बाजी गरी संसार कबीरा चेत ढाल पासा। जम ते सास गिन रहा है किन्ने सुवास रह गए ने नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। अंत विच गरीब निवास जी ने कृपा कीती है भी जेड़े प्यारे गुरसिख सतगुरु जी की पावन बारगा विच आ जांदे ने सतगुरां दी चरणां दी शरण विच आ जांदे ने उबरे ओ बच जांदे ने हर गुर रखवालिया मेरा गुरु उन्हां दी रखिया करदा है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्तकाया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वर है सर्ब रखिया गुरदायाला है पह दुख बिनासन है भगत वशल अनाथ नाथे शरण नानक पुरख अचुत है मेरा सतगुर रखवाला होवा। फिर गुरु उन्हां दी रखिया करदा है। गुरु सवारी संगत जी शब्द की समाप्ति है अमृत बचन सतगुरां ने अपार कृपा कीती है सतगुरु जी रहमता करन साडे भी गुरमुखां वाली बिरती बन जावे सुरत विच नाम दा किनका टिक जावे किनका एक जिस जी बसावा ताकि महिमा गणी ना आवे। अमृत बचना दी सांझ पाउंदियां बेअंत भुल्लां दियां माफियां सब संगतां दियां हाजरियां प्रवान हो जावन जी। एक बार प्यार विच आखो।

जिन्हें भी महाराज की हजूरी विच बैठे हो, साथ चल रहे नहीं, क्यों ना सिमर लईए। महाराज कह रहे नहीं, स्वास स्वास ओदा नाम लो, हर साह विच ओदा शुकराना करो, फिर जीवन विच रस बन जाएगा, टिका बन जाएगा, मन की शांति बन जाएगी। कई बारी सारा कुछ होंदिया होया भी बंदा थिड़किया होया बेचैनी का शिकार है, सच्चे पातशाह कहते हैं स्वास स्वास उसका शुक्र करो, उसका नाम लो, बख्शिश बन जाएगी। करो कृपा जी।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पहर दा जी।

सगल समझरी तुम तुम ते हो सो आज्ञा तुमरे गत मित तुम्हें नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहिबा श्री भगवती जी की पासे दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ध्याय फिरंगत गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई जिस टिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौन दया वे धाए सब थाई हुए स दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई हुए सत सब पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दार का ध्यान करके बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चाली अमकतियां अठियां जपियां तपियां जननाम जपया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाई देग कैंडिट किया तिना प्यारियां सच्चियारियां की कमाई का ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी जिन्हां सिंघा सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया ने चलाए गुरुद्वारा की सेवा लिये कुरबानियां कीतियां धर्म निहारे सिखी केसा स्वस सिंह ने भाई तिना की कमाई का ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारा का ध्यान रखे बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चिताव चितावन का सदका सर्व सुखोए जां जां खालसा जी साहिब तां तां रशरिया देखते फतेह बिरद की पाए पंथक जी श्री साहिब जी साहे खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहे दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सरदान नामदान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन छना चौकियां झंडे बंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत कर रखा आप वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपना पंथ सरसाई दतार जियो श्री ननकाणा साहब ते होर गुरुद्वारा गुरुधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया कुल दर्शन दार सेवा संभाल दान प्यारे खालसा जी ने बख्शे माण्यो के मारन ताण्यो के तारने उठिया की ओर सचे पिता वाहेगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी उदय कर दौड़ करूं अरदास तुद भावे ता आने रास महाराज जी आप जी के चरणा चरदास बेनती आप जी की महान बख्शिश पावन हजूरी अंदर रात्रि के दीवान सजाए गए सजे हे दीवाना आरती शब्द कीर्तन चल रही लड़ीवार गुर शब्द दियां विचारां उपरंत अमृत बाणी के शब्द कीर्तन होए महाराज जी समुची सेवा निभाउंदिआं बाणी पढ़दिआं कीर्तन करदिआं विचारां करदिआं आप जी की सेवा संभाल करदिआं होईआं बेअंत भुलां बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी ग्रहण करन दा बल तुम बख्शिश करना जी बाणी दा पाव आईआं संगतां दे हिरदिआं ते वसौला आईआं संगतां दी आरी दर प्रवान करनी सभना दीआं तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनीआं सभना नूं दरों करो नाम दान गुर सिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रखिया बख्शिश करनी महाराज जी बिन संगता दूर दराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दी जाप सरब कर रही हां जाप सरबण करदिआं आप जी का धनवाद करते हैं बेहत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादारा सिंघा वास्ते उन्होंने पेटा की महाराज जी सारी संगत की हाजरी दर प्रवान करनी सभना की माया सफली करनी किरत कमाइया भी बरकता पाया श्रद्धा भावनावान संपूर्ण करनिया चढ़ती कला बख्शिश करनी आवे दर घर के सेवक बीबी सुखराज कौर संग्रांत से वाहगुरु जी का शुकराना करद गुरु घर वास्ते $50 माया भेटा कर दें कृपा करनी सेवक परिवार की भेटा दर प्रवान करनी परिवार को चढ़ती कला बख्शिश करनी बीबी सुरिंदर कौर की सेहत तंदुरुस्ती और चढ़ती कला की अरदास बेनती करदे भाई मनजीत सिंह औजला गुरु घर वास्ते $126 माया भेटा कर दें कृपा करनी सेवक परिवार की भेटा दर प्रवान करनी परिवार को देर रोकता तंदुरुस्तियां प्रदान करनी चढ़ती कला बख्शिश करनी कृपा करो महाराज जी सिख पंथ में एकता प्रेम भावना की दात बख्शिश करनी जी खालसा पंथ में चढ़ती कला बख्शिश करनी जी इस वेले दीवाना की संपूर्णता हुई पावन पवित्र हुक्मनामा बख्श के सारिया संगतान निहाल करो जी से गुरमुख प्यारे मिलना जिन्हें मिलिया आप जी का नाम चिता आवे नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा अग्या पही अकाल की तभी चलायो सबसे

पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौधरी हमारी राम नाम मन लगा जान लज्जा कर पागा प्रभु जी तू मेरे सुखदाता बंधन तार करे मन निर्मल पूर्ण पुरुष विधाता रहाओ नानक प्रभु अविनाशी ताकि सेव न बिटकी जासी अंतरे त्रिदासा जाप पूर्ण हुई आशा बिलावल महला पंजवा दुख लगे ना पाई सतगुरु पूरा भेटिया जिन बंत बनाई राम नाम औकत दिया एका लिवलाई राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई कोह नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू न चुका मिस न जायो दूत मानो के तू चेतनी उत्तम क्रोध नीत हर की पूजा आरो हर देव नानक के मीत सुहिला रागोड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय घर की ताकि है करती का हुई विचार तित घर गाओ सुनला गुरु सृजन हार सुनगा भोगा सुनला हम वारी सुहले सदा सुख रहा नित जिये नित्य का देवन हार तेरे दाने की ना तो वह दाते कम सुनार समसाह लिखिया मिलकर पावो तेल देहु सजन आसी सड़िया जो हुआ साहि सुमेल घर करे हो पहुंचा सदन पवन सदन हारा सुनला पहला छह घर छुर छह उपदेश उपदेश अनेक बाबा जय घर करते कीर्त हुए सो घर रात उड़ाई तो रहाओ विश्व चसिया घड़िया पहरा तिथि वारी माह हुआ सुपुर नानक करते के देश राखना सी महला पहला गगन में थाल राव चंद दीपक बने तार का मंडल जनक मोती धूप मलिया लो पवन चवरू करे सगल बनराए कैसे आती हुए भाव खंडा तेरी आती अनहता सब दो जंत तेरी रहाओ सह सब नैन नन नैन है तो ही तो सह समूर्त नन एक तो ही सह सुपद बिमल नन एक पद गंध बिन सह सब गंध एव चल तो ही सब मह जोत जोत है सोए सन सम चन हुई गुर साखी जोत प्रगट हुए जोत सुभाव है सुआरती हुए हर चरण कमल मकरंद लोक मनो अन दिन मुहे आई प्यासा कृपा जाते नानक सारण को हुए जाते त्रिनाय वासा रागोड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर वो भरिया नर साधु खंडल खंडा ही पूर्व लिख लिखे गुर पाया मन कर साधु अंजलिखन वड्डा ही कर विंडोत्पन वड्डा ही रहाओ साधक हर रस साध न जानिया तिने अंतर हो मैं कंडा ही हर जन हर हर नाम समान दुख जन्म मरण भाव खंडा ही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सुख खंड ब्रह्मंडा ही हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर रात रात बड़ वड्डा ही जन नानक नाम धार टेक है हर नामे ही सुख मंडा ही राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा

0: गए मुको कर संतन की तुरे। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: अरदास हमारी जियो पिंड कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना न जाने। बोलो जी बोलो जी। अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास। रामदास हो साय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिह दिठे शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निदा बहताए। सब थाई होए साय दसवें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सब थाई होए साय दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दास जी का ध्यान करके बोलो जी। निमाणियां दे मां जताणियां दे तां न्यूटियां दी ओट गुरु गरीब निवाज। तन तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पाणी अंदर चार पहर दिन सुखां दा बतीत होया। सतगुरु जी अमृत वेले तो इस वेले तक आप जी खुले दर्शन दीदार दे के निहाल कर रहे हो। रात दे दीवाना दी संपूर्णता आप जी दी सेवा संभाल सोहला साहब जी दी बाणी दा जाप होया। महाराज जी सारियां संगतां तुहाडे सेवादार कीर्तनियां नूं सदा चढ़दी कला वाला जीवन रहण आई है सुखमई बतीत कराओ। सेवादार हाजर ने आग्या बख्शिश करो।

ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਾਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏ ਨਮੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਅਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕ ਆਖਿਅਰ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਬ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਦ ਸਿੱਧ ਨਾਉ ਨਿਦ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ ਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੇਸ਼ ਸੁਝੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਬਿਨਾਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸੁਖ ਵਿਹਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਅਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਬਸੇ ਹਰ ਨੇਰੇ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬ ਹੂ ਨਾ ਝੂਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ। ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਪ੍ਰਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭੈ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚਹੁਕੁੰਟ ਜਾਤੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਤਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਾਟ ਘਾਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ। ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਹਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੋਤ ਮੀਤ ਨ ਪਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ। ਜਹਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੈ ਆਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਅਨਕ ਪੁਨਹਿ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ।
सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जापत हुए सुखिया, लाख करूरी बंधन पर हर का नाम जपत ने सुतर, अनेक माया रंग तीखना बुझावे, हर का नाम जपत आघावे, जिह मार्ग इहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तय पार पराही, अनेक बिघन जय आय संगार, हर का नाम तत्काल उधार, अनेक जून जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे बिसराम, हाओ मैला मालक बहुना तोवे, हर का नाम कूट पाप खोवे, ऐसा नाम जप हो मन रंग, नानक पाइये साध कै संग, जेहे मार्ग के गने जाय न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा, जेहे पैंडाए महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहा पंथ तेरा को ना सियानू, हर का नाम तह नाल पशानू, जय महापयान तपत बहो काम, तय हर के नाम की तुम ऊपर श्याम, जह त्रिखा मान तुझ आकर्खै, तह नानक हर हर अमृत बरखै, भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उधरे जान कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात, हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मान तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बबेकै, हर का नाम जन कौ मुकत जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब पर ना भंग, हर का नाम जन की वडयाई, हर कै नाम जन सोभा पाई, हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कश नाहे वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन कौ आप प्रभ दीना, हर हर जन कै ओट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग केते तरे, पार जात इहु हर को नाम काम तेन, हर हर गुण गाम सब ते उत्तम, हर की कथा नाम सुनत दारद दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुरत सब नसै, संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल काश अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जान कोए, सलोक बहु शास्त्र बहु सिमरती, पेखे सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कार राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुर मुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड प्रथमी फिरे चैर जीवे, महा उदास तपी सरथी वै, अग्न माहे होमत परान, कनक अशव है वर भूम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन, नेमख नेमख कर शरीर कटावै, ताओ पी होमै मैल न जावै, हर के नाम संसर काश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान ना मन ते हुटै, सोच करै दिन सो अर रात, मन की मैल ना तन ते जात, इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहू न बिखिया टरै, जल धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच, बहुत स्याण पजम का भौ व्यापै, अनेक जतन कर त्रिशन ना त्रापै, भेख अनेक अग्न नहीं बुझै, कोट उपाव त्रगै नहीं सिजै, छूट स नाही ऊब पयाल, मुहे व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बेन तिल नहीं मानै, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे, जे को आपू ना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय साध गावे, जे को अपनी सुभा लूरै, साध संग ए हो मैं शोरै,
जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरणी परै जिस जन को प्रभु दर्स प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस काओ जो जाने नीचा सूगनिय सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल कीरीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखै सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सामन दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरत हन कौ धन तेरो नाउ निथावे कौ नाउ तेरा थाउ निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल घटा कौ देवा उदान करन करावन हार स्वामी सगल घटा के अंतर जामी अपनी गात मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते हुए नानक अवर न जान सुकोए सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मैं उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जिहे कट वसै हर नाम सलोक निर्गुनियार ए अन्या सो प्रभ सदा संभाल जिन किया ते सचीत राख नानक निबही नाल अष्टपति रमैया के गुण चेत पराने कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अगन मैं जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार दूध पार जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सैन मुख्य प्याओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कशु न बूजै बख्श लेहो तौ नानक सीजै जिह प्रसाद धर ऊपर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जिह प्रसाद पीवै सीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जिह प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसै त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे नानक काड ले हो प्रभ आपे आद अंत जो रखन हार तिस स्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नव निद पावै ता स्यों मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगै मान तिसै बिसारै मुगद अजान सदा सदा ए भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर प्राणै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए घर तब प्रीत भाषम संग होए अंधकूप मह पतत बिकराल नानक काट लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेखो अंतर मल माया शपश नाहे काश करे छपाया बाहर ज्ञान तिहन इसनान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन सुवा गल पाथर कैसे तरह अथा जाकै अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजन सहज सुमात सोन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गले हो ओढ़ निभावै कहा बुझारत बुझै डोरा निस कहिए तौ समझै पूरा कहाँ बिसन पद गावै गुंग जतन करै तौ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू हां सुगवन करकार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवै नाचीत जो बैराई तास्यों प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मनै मनै प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महा लोभ ध्रोह एआहू जुगत बेहाने कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मह सूक कनेरे कोय न जानै तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सकल समगरी तुमरै सूत्र तहारी तुम ते होए सुआग्याकारी तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागै आन सुआए
नानक कहू न सी जई बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्तु कारण बिखोट गवावै एक पी न दे दस पी हिर ले तौ मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर सिउ नाही चारा ताको कीजै साधनम सुकारा जाकै मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सुख काहू मन बूठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया अगनत साहो अपनी देरासो खात पीत बरतै आनंद उलासो अपनी अमान काश बाहुल साहो ले अज्ञानी मन रोस करे अपने प्रतीत आप ही खोवै बौरस का विश्वास ना होवै जिसकी बस्त तिस आगै राखै प्रभ की आज्ञा मन माथै उसदे चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनेक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया सिउ रंग लावै ओ बिन सयो मन पछुतावै जो दिसै सो चलन हार लपट रहयो तह अंध अंधार बटाऊ सिउ जो लावै नेह ताकौ हाथ न आवै केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जोगन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असब बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जी वै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरै मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बेकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा साच बिना कै सुहोवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताकै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो किरपन के नरारथ दाम धन धन ते जन जिह कट बस्यो हर नाव नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर काश अवर कुमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेख ना काहू पीन अवर उपदेश है आप ना करे आवत जावत जन्म मरै जिसका अंतर बसै निरंकार तिस की सीख तरै संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आपे मानै आपे आप करदन बेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव सियानप सगल ते रहत सब कछ जानै आत्म की रहत जिस भावै तिस लए लड़ लाए थांतनंतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सुजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस को सिमरत परम गत पावै जिहि प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जिहि प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जिहि प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याइय त्यावन जोग जिहि प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग कत अवर लुभावै जिहि प्रसाद सुख सेज सोई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जिहि प्रसाद तुझ सब को मन मुख ताकू जस रसन बखानै जिह प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगै मान पावै नानक पात से ती कर जावै जिह प्रसाद आरूप कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै जिह प्रसाद तुझ को न पहुचै मन सास सास सिमरौ प्रभ ऊचे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬ ਹੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ ਰਾਖ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ। ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਤ ਤਿਸੇ ਧਿਆਈ ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਜੋ ਇਕ ਅਲਖਾ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਹਿ ਪੁਨ ਬਹੁਦਾਨ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਹ ਸਾਹ ਚੇਤਾਰੀ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਉ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੈ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗਹੋ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨਹੋ ਵਿਸਾਰ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕਉ ਜਾਪ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤੇ ਸਹਿ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਚ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬੇਗਾਸ। ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪਾਉ ਕਛੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਲਾਇਆ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਇਨ ਕਹਿ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ। ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੂਤਨ ਬੇਰਾ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪਰ ਫੁੱਲੈ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭੁੰਚਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਕਤ ਹੂੰ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹੋ ਤਾਪ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਬੜਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨ ਆਈ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਆਜਾਰ ਸਵਾਹੈ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਗ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨੇ ਸਤਾਰੈ। ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਬਰਸਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ। ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਰਬਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ੁ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋ ਤੇ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਕਲੂਕਤ ਹਰੈ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੋਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ੁਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਉਦਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾ ਮੰਤੇ ਬਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ। ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ ਲਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਘਾਟ ਘਾਟ ਡੀਠਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ।
साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संयोग। साध की महिमा वेद न जानै, जेता सुनै तेता बख्यानै। साध की उपमा तेहु गुण ते दूर, साध की उपमा रही भारपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊच ते ऊची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बनयाई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निरलेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौला कै तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों बसधा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यो पावक का सह सुभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागै जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास, जैसे तार ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा, मन आपो न है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल तीरीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पारो पुकारो माहा। ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तहवत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा साध जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्स बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी कहो बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी कहो खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानै भेद, ब्रह्म ज्ञानी कहो सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाय अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखानै, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जानै। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तहनी। सलोक उरतारै जो अंतर नाम, सर्व मैं पेखै भगवान। निमुख निमुख ठाकुर नमस्कारै, नानक ओह अपरस सगल निसतारै। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पर त्रै रूप न पेखै नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। करन ना सुनै काहू की निंदा, सब ते जानै आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिख्या पर हरै, मन की बासना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कूट मध्ये को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिशन की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत हुवै निह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरा नाम जपावै, नानक ओ वैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग।
मानते बिनसै सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै ते सुप भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म मै सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कहे उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद पुराण सिमरत बूजै मूल सूखम मैं जानै असथूल चौवरना कौ दे उपदेश नानक उस पंडित कौ सदा आदेश बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान चौवरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिस की गत होए साध संग पावै जन कोए कर कृपा अंतर उर तारै पास प्रेत मुगद पाथर कौ तारै सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहु जुगत कित न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नगरी आया दास संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सुदास दरगह प्रवान अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सोजी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरख तैसा सुसोग सदा आनंद तै नई वियोग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेखो खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ आपे करण करावण जोग प्रभ पावै सोई फुन होग पसरेओ आप होए अनत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म केरा जैसी मत दे तैसा प्रगाश पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहे निहाल सलोक उस्तत करया नेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहु विद अनक प्रकार अष्टपति कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पह तीर्थ वासी कई कोट बन प्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सर होते कई कोट आत्म ध्यान तारै कई कोट कब का विचारै कई कोट नव तन नाम त्यावै नानक करते का अंत न पावै कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अभेग आत्म ने कोर कई कोट पर दर्भ को हिरै कई कोट पर दुख न करै कई कोट माया शर्माहे कई कोट परदेश प्रमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रास भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निप जाय कई कोट पवन पाणी बैसंत्र कई कोट देश भू मंडल कई कोट ससियर सूर नखियत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर शत्र सगल समग्री अपने सूत तारै नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस तारै कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास्त कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चर जीवे कई कोट गिरी मेर सुवरण थीवे कई कोट जख्य किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच सब ते निरह सब हुते दूर नानक आप अलिपत रहया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मै जीवै मरै कई कोट बौजू नी फिरै कई कोट बैठक ही खाहे कई कोट घालै थक पाए कई कोट किए धनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाणा तह तह राखे नानक सब केश प्रभ कै हाथे कई कोट भए बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ कौ खोजंते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिन कौ मिल्यो प्रभ अभिनाश कई कोट मंगै सत संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन कौ होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा तन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत की नो बिसथार कई बार पसरियो पसार सदा सदा एक एक ओंकार कई कोट कीने बहु भांत प्रभ ते होए प्रभ माहे समात ताका अंत न जाने कोए आपे आप नानक प्रभ सोए
कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हुवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहार एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सद सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सहज समावै अपने जन को सासा सुमारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अष्टपदी करण करावण करणै जोग जो तिस भावै सोई होग थिन मैं साप थापण हारा अंत नहीं किश पारा वारा हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे उपजाय हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनकरंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडयाई नानक सब मह रहया समाई प्रभ पावै मनुख गत पावै प्रभ पावै तां पात्र तरावै प्रभ पावै बिन शास्ति राखै प्रभ पावै तां हर गुण पाखै प्रभ पावै तां पतत उधारै आप करै आपन बिचारै दुहां सिरियां का आप स्वामी खेलै बिगसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवरना आवै कहो मनुख ते क्या होइ आवै जो तिस पावै सोई करावै इस कै हाथ होए तां सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे अनजानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै पर मैं भूला दह तिस धावै निमख माहे चार कुंठ फिर आवै कर कृपा जिसे अपनी भगत दे नानक ते जान नाम मिले खिन मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जा का दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दह तिस प्रगटावै जा कौ अपनी करै बख्सीस ताका लेखा न गनै जगदीस जियो पिंड सब तिस की रास घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो ते सुभावै सोई फुन थियो कबहू ऊच नीच मैं बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊप आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू निरत करे बहु भांत कबहू सोए रह दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्ब की हो तरवाल कबहू होए बह बड़ राजा कबहू पेखारी नीच का साजा कबहू आप कीरत मह आवै कबहू भला भला कहावै ज्यों प्रभ रख है तिव ही रह गुरप्रसाद नानक सच कहै कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मोन धारी लावे ध्यान कबहू तट तीर्थ इसनान कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनेक जोन भरमै भरमिया नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै ज्यों प्रभ भावै तिव नचावै ज्यों तिस भावै सोई होए नानक दूजा अवर ना कोए कबहू साध संगत ए पावै उस अस्थान ते बहुर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रकाश उस अस्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म के संग ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कहे सद कुरबान सलोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसकै अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जीवन वंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहु जून परमावै धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी वसावै नानक इहा मुक्त आगै सुख पावै धनवंता होए कर गरबावै तृण समान कछ संग न जावै बहु लस्कर मान को ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं होए जाए पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुरप्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दरगह प्रवान कोट कर्म करै हों तारे सरम पावै सगले बिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म निंद्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसै भलाई निकट न आवै सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछु होए तब इस को सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरप्रसाद नानक हों छूटे
सहस खटे लख को उठतावै त्रिपत न आवै माया पाछै पावै अनक भोग बिख्या की करै नह त्रिपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ वृथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करणे हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो केश कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग बूझै देखै करै बबेक आपे एक आपे अनेक मरै न बिनसै आवै न जाए नानक साध ही रहया समाए आप उपदेसै समझे आप आपे रचया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्थार सब कछ उसका ओ करने हार उसते भिन्न कहो किश होए तां तनंतर एक सोए अपने चले तो आप करने हार कौतक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कूट मधे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखयाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरणहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सोभा ते हीन संत के हथे को रखे न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए संत कै दुखन त्रिगत ज्यों के रिमाए संतन कै दुखन कृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब को शलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच नीचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत भावै तां ओए पी गत पाए संत का निंदक महा अत ताई संत का निंदक खिन टेकन न पाई संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मैं दुख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा बिकारी संत का दुखी जन्मै मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी कौ नाही ठाओ नानक संत पावै तन लय मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटै संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै संत के दुखी कौ ध्यान प्रमाइयै संत का दुखी उजड़ पाइयै संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यों सास बिना मृतक की लोथा।

मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न त्रष्ट है कोई, जैसा भाव है तैसा कोई होए, पया किरत न मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा सदा तिसको नमस्कार, सब घाट तिसको करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास विरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से सलोक, तज हो सियान पसुर जना हो, सिमरहो हर हर राय, एक आस हर मन रखा हो, नानक दुख परम पहु जाए, अष्टपदी मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लग आए, मारे रख है एक आप, मानुख कह किश नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उसत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लिह जियो, नैनो पेक ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटाय पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक ऊचल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, एत ओत कियो सो जीस जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुरप्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्ब रोग ते वो हर जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त मैं सोई निर्बान, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तसै न लागै दुख, जिस काओ हर प्रभ मन चेते आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभु अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरप्रसाद तत सब बूजिया, जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोइया सथूल, नह किछ जन्मै नह किछ मरै, आपन चले तो आप ही करै, आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल मह आप, अनेक जुगत राचो, थाप उथाप अविनाशी नाही किश खंड, धारण धार रहो ब्रह्मांड, आलख अभेव पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सो बावंत, सगल संसार उदरह तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख बिसारण, आपे मेलै कृपाल, गुरु का शब्द जप पय निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करै बड़ भागै, नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान, जो केश करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाए होवै सो होए, करणे हार पछाणै सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निदान उन्हों बने आए, आपस को आप दिनो मान, नानक प्रभ जान एको जान, सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ, बिरथा जन नहार, जाक सिमरन उदरी है नानक तिस बलहार, अष्टपति टूटी गांडन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते ब्रथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप, आपन किया कछु न होए, जे सौ प्राणी लोचै कोए, तिस बिन नाही तेरे किश काम, गात नानक जाप एक हर नाम,
ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ।

अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन नित कर चरण कमल हृदय सिमरै साधु बलहारी सतगुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमृत सोए।

सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेपो, मन में रख हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे, नानक भारम मोह दुख तहते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। भाव चूका निर्भव होए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे। जिसका सा तिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी। हित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पियोही, कला तार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपने कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर बिन रंत्र एको सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, पै प्रगास साध कै संग। राचे रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलहारी। श्लोक साथ न चल बिन भजन, बिखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक एहो धन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपाव सब मीत विसारो, चरण कमल रिद में उर तहारो। करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहु नाम हर वथ। ए तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखू मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस धन को चार कूट उठता वै, सो तन हर सेवा ते पावै। जिस सुख को नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस सुबा को करै भली करणी, सा सुबा भज हर की सरणी। अनको पावे रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए। सर्वनि धान मैं हर नाम निधान, जप नानक दरगै प्रवान। मन प्रभु दो हर कै नाए, दैत सुतावते आवै ठाए। ताको बिघन न लागै कोय, जाकै हृदय बसै हर सोए। कल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। भव बिन सह पूर्ण होया, सो भगत पाया तम प्रगास। तित कर जाए बसै अविनाशी, कहो नानक काटी जम फासी। तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा। आवा गवन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग सरण गुरुदेव। इउं रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनको पावना छूटन हारे, सिमरत सास्त वेद विचारे। हर की भगत करो मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए। संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना। सो तमीत कुटंब अर बनता, इन ते कहो तुम कवन सनाता। राज रंग माया बिसथार, इन ते कहो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ असवारी, झूठा डंप झूठ पासारी। चिंजन दिए तिस बुझे ना बिगाना। नाम बिसार नानक पछताना, गुर की मत तू लेहे आने। भगत बिना बहु डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखू मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे। आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो। सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल। होहे आचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभालो। षाड सियाणप सगली मना, साध संग पावै सच तना। हर पूंजी सांच करो व्यवहार, इहां सुख दरगा जयकार। सर्व निरंतर एको देखो, कहो नानक जक मस्तक लेखो। एको जप एको सलाहे, एक सिमर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एको एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप। अनेक विसथार एक ते भय एक आराध। प्राशत गए मान तान अंतर, एक प्रभराता गुरु प्रसाद। नानक एक जाता श्लोक, फिरत फिरत प्रभ आया। परया तो शरणाए, नानक की प्रभ बेनती। अपने भगती लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभदान, कर कृपा देवो हर नाम। साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें त्याहावो।
चरण कमल सिंह लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एक आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख हुए, हर रस पावे बिरला कोय। जिन चाखिया से जान त्रे पताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपार परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध कै संग। परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास आन दिन लिव लाग। बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुकत जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। ऐश पुनी श्रद्धा सब पूरी, रब रहया सद संग हजूरी। जिसका सा तिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिख ते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांडै। गुरपूरै तत एह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करहो एहो काम, आन त्याग जपहो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपहो अवरह नाम जपावहो। भगत पाए तरिय संसार, बिन भगती तन होसी शार। सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपहु गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मन तन अंतर एही सुआओ। नेत्रों बेख दर्श सुख होए, मन बिगसै साध चरण धोए। भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग। एक बस्त दीजै कर माया, गुरप्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्ब समाए। प्रभ बखसंद दीन दयाल, भगत वशल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल। आद पुरुख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुनी यार नीच अजान, नानक सुमरी सरण पुरुख भगवान। सर्व बैकुंठ मुकत मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए। अनक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पहाई। बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। भली सो करनी सो बात नवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप। आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब आकार एकाश ना दृष्टिता, पाप पुन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समात, तब बैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वरण चिहन ना जापत, तब हरख सोग कहो किसै व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वरतीजा, नानक करने हर ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत कहो किस कहो गनी। जब एक हर अगम अपार, तब नरक सुरग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब सेव साकत कहो के तठाए। जब अपहे आप अपनी ज्योत तरै, तब कवन निडर कवन कत डरै। आपन चले तो आप करने हार, नानक ठाकुर अगमा पार। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन मरण कहो कहा बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त केस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे।
ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਣ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ। ਜਹਿ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ, ਤਹਿ ਬਿਨ ਮੈਲਕ ਹੋ ਕਿਆ ਧੋਤਾ। ਜਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨ, ਤਹਿ ਕੌਣ ਕਉ ਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਹਿ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼, ਤਹਿ ਸ਼ਾਲ ਸ਼ਿਦਰ ਲਗਤ ਕਹੁ ਕੀਸ। ਜਹਿ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ, ਤਹਿ ਕਿਸੈ ਭੂਖ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣ ਸੰਗ ਬਣਾਈ, ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੋਤ ਭਾਈ। ਜੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪਰਬੀਨ, ਤਹ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾ ਕੂਚੀਨ। ਜਬ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਉਰਤ ਹਰੈ, ਤਉ ਸਗਨ ਆਪ ਸਗਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੈ। ਜਹ ਆਪਣ ਊਚ ਆਪਣ ਆਪ ਨੇਰਾ, ਤਹਿ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਗਤ ਜਾਨੋ ਆਪ। ਜਹ ਅਸ਼ਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ, ਊਹਾਂ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ। ਆਪਸ ਕਉ ਆਪੇ ਆਦੇਸ, ਤੇਹੋ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਜਹ ਏਕੈ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ, ਤਹਿ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ।

जह आपरच्यो प्रपंच आकार तेहो गुण मैं कीनो विस्थार पाप पुन तै भई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल हम मैं मोह परम पह पहार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तव नानक एक जह अवगत भगत तह आप जय पसर पासार संत प्रताप दोहु पाख का पे तने उनकी शोभा उनहु बनी आपे कौतुक करे आनंद चोज आपे रास भोगन निरजोग जिस भावे तिस आपन नाए लावै जिस भावे तिस खेल खिलावै बेसुमार अथा अगंत तुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथय आप सुनने हार आपे एक आप बिस्थार जा तिस पावे ता सृष्ट उपाए अपने भाणे लय समाए तुम ते पिन नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जा को प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सबता के हा दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस रख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत पार नानक दा सदा बलहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने करतब जाने आप अंतर जामे रहो व्याप प्रतपाले जी अनुभव पांत जो जो रचियो सो तिसै ध्यात जिस भावे तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करण हार नानक एक जानिया जन लागा हर एक कै नाए तिस की आस न बरती जाए सेवा को सेवा बने आई हुकम बूझ परम पद पाई इस ते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पाए निर्वैर आन दिन पूजे गुरु के पैर ए लोक सुखी ए पर लोक सुहेले नानक हार प्रभु आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभु परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पहर प्रभु पेखू नेरा मिटै अज्ञान बिनसै अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पलत दोए लेहो सवार राम नाम अंतर उरतहार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया मन तन नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभ है खीप तुम्हारी एका टेक रखू मन माहे नानक बहुर न आवै जाहे तिस ते दूर कहा को जाए उबरै रखन हर त्याए निरपौ जपै सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणे छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन कहो कोई न पहुचन हार सर ऊपर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदहरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामे पुरख प्रधान जिस मन बसै सहोत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पै अमरा पद पाया साध संग नानक हर तिहाया श्लोक ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाशो हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगासो अष्टपति संत संग अंतर प्रबडीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समगरी एकस कट माहे अनक रंग नाना दृष्टाए नौ निधि अमृत प्रभ का नाम देही मैं इस का विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचर्ज बिस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बहर अनंत घाट घाट व्याप रहया भगवंत
ਧਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਭ ਬਨ ਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸੇ ਸਮਾਹੇ ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਠਾਓ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਿਅਤਰ ਮੈਂ ਏਕੋ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬਹੂੰ ਡੋਲੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਖਿਲੈ ਖੇਲ ਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਣੈ ਅਮੋਲ ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਕੀ ਜੋਤ ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬਿਸਾਸ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ ਸੰਤ ਜਨ ਸੁਨੈ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀਏ ਰਹਿਤ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ।

अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेशो पार ब्रह्म निकट कर पेखो सास सास सिमरहु गोबिंद मन यंत्र की उतरै चिंद आसो अनित त्यागो त्रंगो संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अगन सागर तरहो हर धन के भर लेहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भाज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गप गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन।

उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरै लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे सारण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय।

तरस न कहते, कर प्रसाद दया प्रभतारी, नानक ने बही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहु संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होते निधान। सर्व इच्छा ताकी पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर न होवै आवन जान। हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जसै प्राप्त होए। खेम सांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्वत है सिद्ध। विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता। ए फल तिस जन कै मुख पहने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग मै ताकी गत होए। गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटाए, संत कृपा ते जम ते छुटाए। जा कै मस्तक कर्म

अमृत वेला सच नाऊ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक इवै जानिए सब पिस चियार थाप्या ना जाए किता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निदान गावी है सुनिए मन रखिए भाऊ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख

कहना कथन न जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जित सपावा, विन पाने के नाए करी, जेती सिर ठोपाई वेखा, विन कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोए, चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले। जे तिस नजर न आवई, ता वात न पुछै कि कीटाए अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे, ते हा कोई न सुजई, जे तिस गुण कोई करे। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरत धवल आकाश, सुने दीप लो पाताल, सुने पोहे न सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश,

सुनया अक्षर का स्नान, सुनया पढ़ पढ़ पावहमान, सुनया लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगाह, सुनया दुख पाप का ना, सुनया सरा गुणा की गाह, सुनया सिख पीर पातशाह, सुनया अंधे पावह राहु, सुनया हाथ वह सुगाहु, नानक भगता सदा विगाह, सुनया दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जिकु कह पिछे पछताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का वह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन हुए, जिकु मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मुँह चुट्टा न खाए, मन्ने जम कह साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन हुए, जिको मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ संप्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंध, ऐसा नाम निरंजन हुए, जिको मन जाने मन कोए, मन्ने पाव है मुख द्वार, मन्ने परवार है साधार, मन्ने तरह तारे गुर सिख, मन्ने नानक पव है न भिखु, ऐसा नाम निरंजन हुए, जिको मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पाव है दर गहमान, पंचे सो है दर राजान, पंचा का गुरे ध्यान, जी को कह कर विचार, करते कह कर नहीं सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख था पर क्या जिन सूत, जी को बुझे हुए सत्यार, तवल पर किता पार, धरती होर पर होर होर, तिस्ते पार तले गमन जोर, जी जा तरंगा के नाव, सबना लिखिया बड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने को, ए लेखा लिखिया किता हुए, किता तान सुआलिहो रूप, किती दात जाने कौन कूत, किता पसाओ एको को आओ, तिस्ते हुए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, संख जप संख पाओ, संख पूजा संख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती संख दातार, असंख सूरम पक्षार, असंख मोल विलाय तार, कुदरत कवन कहा विचार, वार न जावा एक वार, जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलबड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर कर है पार, नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, गम गम असंख लो असंख है, सिर पार हो अखरी नाम अखरी सालाहा, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलन बाण, अखरां सिर संजोग बखाण, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जि फरमाए तिब तिब पाए, जीता कीता तिता नाओ, विण नावे नाहीं को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावे इक वार, जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिय हथ पैर तन देह, पानी धोत उतर सुखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लई ओ धोए, भरिय मत पापा कै संग, धोपै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आकण नाई, कर कर करन लिख लै जाहु, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आव जाओ, तीर तप दया दत्त दान, जी को पावे तिलका मान, सुनया मनया मन कीता भाऊ, अंतरगा तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बिन गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आत बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन से रुत्ति माहु कवन, जित हुआ आकार, वे न पाईया पंडती, जे हुए लेख पुराण, वक्त न पायो का दिया, जे लिखण देख पुराण, तित वार न जोगी जाने रुत्माओ न कोई, जा करता सिर ठीको साजी, आपे जाने सोई, किव करया का किव सालाई, क्यों वरनी किव जाना,
नानक आखन सब को आख एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा कहूवै नानक जी को आपौ जाने अगै गया न सू है पातालां पाताल लख आगासा आगास कोड़ कोड़क पाल थके वेद कैनिक वातु सह सटारह कैनक ते बासलू इक धातु लिखा हुए तन की है लिखे हुए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप सालाही ती सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पव है समुंद न जानी है समुंद सा सुल्तान गिरह सेती माल धन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो न विस रहे अंत न सिफती कह न अंत अंत न करण दे न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे इहो अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता हुए वड्डा साहिब उच्चा थाउ उच्चे उपर उच्चा नाउ एवड उच्चा हुवै कोई तिस उच्चे को जाने सोए जेवड़ा आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए किते मंगै जूद अपार कित्या गणत नहीं विचार किते खप टुटे बेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूरख काही खाए कित्या दुख भुख सदमार के पेदा तेरी दातार बंद खलासी भाण हुए हो राख न सकै कोए जे को खाए के आखन पाए ओ जाने जितियां मुँह खाए आपे जाने आपे दे आखे से भेके के जिसन बख्शे शिव सालाह नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुल आवह मुल जाहे अमुल पाए मुला समाहे अमुल धर्म मुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म मुल फरमान मुलो मुलाख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आख वेद पाठ पुराण आख पढ़े करै वख्यान आख बरमे आख इंद आख गोपी तै गोविंद आख ईश्वर आख सिद्ध आख किते किते बुद्ध आख दानव आख देव आख सुर नर मुंजन सेव किते आख आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे किते किते होर करे हे ताक न सकै के जिवड़ भावै तिवड़ होए नानक जाने सचा सोए जे को आखै भूल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावार गावार सो दर के हा सो घर के हा जित वै सुर संभाले वाजे नाद अनेक असंखा किते वावन हारे किते राग परिशो कहियन किते गावन हारे गावै तुहनु पौन पानी बै संतर गावै राजा धर्म दुआरे गावै चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावै इंदिंदा सुन बैठे देवते आदर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतुखी गावै वीर करारे गावन पंडित पणद कीसर जुग जुग वेदा नाली गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले गावन रतन पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावह जूद महाबल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुदनु गावह जू तुद पावन रते तेरे भगत रसाले ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾਵ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀਓ ਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿ ਨਰਜਾਈ मुंदा संतोख शर्म पर झोली ध्यान की करे विभूत किंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश सह आदेश आद अनिल अनाथ अनाहत जुग जुग कुवेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिच दवरा साध संजोग जोग द्वेकार चलावै लिखे आवै भाग आदेश सह आदेश
आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान एक संसार एक भंडारी कलाए दीवान जीव तिस भावे तिवे चलावे जीव होवे फुरमान वेख न नजर न आवे बहुताय विडान आदेश तिसे आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दू जीव बहु लख।

नमस्तु निर्नामे नमस्तु निर्कामे नमस्तु निर्दाते नमस्तु निर्गाते नमस्तु निर्दूते नमस्तंगभूते नमस्तंगलोके नमस्तंगशोके नमस्तु निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग गाहे नमस्तंग बाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रभुगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग गम्मे नमस्तस्त रम्मे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त जब्बे अधिसंग अधिशे नमस्तंग पेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व कूपे नमो सर्व कापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्त देव नमस्तंग पे वै नमस्तंग जन्मे नमस्तंग सुबन मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस् दयाले नमस्तंग वर्णे नमस्तंग वर्णे नमस्तंग चिरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व तंदे नमो सतबंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी चंतवा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अदे है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निधान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचांज है अमीक है रफीक है अतंद है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निर्सीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबाह है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिरेक है भुजंग प्रयाचंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नृसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ति विभूते कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वर परम रूपे नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो वस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वर परम जुगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवे नमो प्रेत प्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानं सर्वं परनासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता अदो उर्द अर्दं अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचेति अपेति अनामंग कामं समस्तोपराजी समस्तस्ततामं तीराजो चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयाचंद
अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ते निदाने नमस्तुंग निर्णाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साहसाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वत्यत् नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्णं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं परसीजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी चरपट चंत्व परसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल जुगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्मंगल अकर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग पुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआ चंत्व प्रसाद आद रूप अनाद मूरत जौन पुर कपारु सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाद नाम ठाम न जात जाक रूप रंग न रेख वाद गुरु खुदार मूर्त जौन आदश एक देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैलु अनुराग नाम काम बहीन पेखत ताम हूं नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदै मान तथाहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जानही जे भेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानी के जेव तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मानी पुरतीन लोग चौदह के विकह जग जापी जय जाप वा देवनाद मूर्था पि सबै जे था परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुर कपार सर्व ईश्वर च्यु स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहत भूत लख भेष अंग राग न रंग जाकै जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुष्ट एक पुरख तूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन भंग नात्मिक पुरख पार सर्वलायक सर्व काय सर्व प्रतपार सर्वगंता सर्वंता सर्व त्यन पेख सर्व शास्त्र न जानहि जे रूप रंग रेख परम भेद प्राण जाकै नित भक्त नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मद पार छंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार असन भंग उपमा नांगन भव प्रकाश निश्चिन अनाश आजान बाहु साहन साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग आभा अपांग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्युत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा परनाड्य अंडन पाड्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्णामे अकामे पुजंग प्रया चंद चतुर्चक्र कर्ता चतुर्चक्र हर्ता चतुर्चक्र दानी चतुर्चक्र जानी चतुर्चक्र वर्ती चतुर्चक्र परती चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र काले चतुर्चक्र पासे चतुर्चक्र वासे चतुर्चक्र मान्य चतुर्चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्रह न मित्रह न परमंग न पित्रह न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्रह न मित्रह परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृशय कृशय भगवती चंत्व प्रसाद कथते के आचिज देशय के आ पिज पेशय के आ गंज कर्मय के आ भंज भरमय के आ पिज लोकै के आ दित सुकै के अवतूत वरणय के बेभूत करणय के राजंग प्रभाह के धर्मंग तुजाय के अशोक वरणय के सर्वा भरणय
कि जगतं कृति है कि छत्रं छत्री है कि वर्मं स्वरूप है कि अनुभव अनुप है कि आदि अदेव है कि आप अपे है कि चित्रंग बहीन है कि कै अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह कि पाक बेअब है कि गैबुल गैब है कि अफुल गुना है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी ध्यांद है कि राजक रहीम है कि कर्मं करीम है कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलिम है कि परमं फहीम है कि अकल अलाम है कि साहिब कलाम है कि हुस्नल वजू है तमामुल रुजू है हमेशल सलाम है सलीकत मुदाम है घनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल की राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है वंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी त्रिवर्गं त्रिबाध्ये अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है कि नरकंग प्रनाश है प्रथुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विपुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद तव चाचरी चंद अपंग है अनंग है अपे अखे है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंद है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिक है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चिरपट चंतव प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल चंतव प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं शरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंतव प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुस्नल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी दिहांद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुस्नल जमाल है गनीमुल किराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शिकान है हिरासुल फिकान है कलंकंग प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकंग प्रनाश है वहस्तुल निवास है कि सरबुल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है आदिशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जुमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि चलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनांग है कि मितो अपंग है मत पार चंतव प्रसाद
मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम हर बर अगंज हर नर पर पांजु अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड।

गतमित उदार जल तल अमंड दिस विश अपंड जल तल महंत दिस विश बेअंत अनपवना त्रेतर तुरास आजान बाहु एक सुदाहु ओंकाराद कथनीय नाद खलखंड खयाल गुरुवर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जिगात आज जिनाबात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडट अपार आडीठ धर्म अतडीठ कर्म अनवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरने जग के करने मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विषम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से परते पर है करुणा कर है जपा जप है तपा तप है अकृता कृत अमृता अमृत अमृता अमृत करुणा कृत कृता कृत धरणी त्रित अमितेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत अमृता अमृत जब्बा कृत अमृता अमृत नर नायक है कलकायक है विश्वंपर है कुरनाल्य है नृपनायक है सर्पायक है पावभंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है पुजंग प्रया छंद

नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंतां संसात रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रियनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वास आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अवय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम काम अगाह अटाह अनाथे प्रमाते अजूनी अमूनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुलना में समस्त निवासे निरकामंग बेपूते समस्त स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचिदानंद सत्यं परनासी करिमुल कुनिंदा समस्त निवासी अजाय बेपूते गजाय गनि में हरियं करियं करिमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सोयाम पाव सुबंग सर्वदा सर्वजुगते सर्व

सदा अंग संगे अपंगं बेपूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इको अंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह।

नजर बाणी, जिनको नजर कर्म हुवै हृदय तिन्हा समानी। पीव अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी, कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आंख वखाणी। हर हर नित करह रसना, कहया कछु न जानी। चित जिनका हिर लिया माया, बोलन पैर वाणी। कह नानक सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी, गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा, इहो हुआ सुमाओ। शब्द छेती मन मिलिया, सच्चा लाया पाओ। आपे हीरा रतने आपे, जिसनु दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव सकता पुपाए, कह करता आपे हुकुम वरताए। हुकुम वरताए आवे कह गुरमुख सह बुझाए। तोड़ै बंधन हुवै मुक्त गुरमुख, तोड़ै बंधन हुवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे, सो हुवै एक स्यों लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमर शास्त्र पुन पा विचार दे, तत्तै सार न जानी। तत्तै सार न जानी गुरु बाजहु, तत्तै सार न जानी। तेहि गुणी संसार भ्रम सुत्ता, सुत्या रहन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे, जिन हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए, जिसनु अंधन हर लिव लागे, जागत रहन विहानी। माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है। मनो क्यों विसारी है वड़दाता, जे अगन में आहार पहुँचावे। ओ सुनो कह पोए न सकी, जिसनु अपने लिव लावे। अपने लिवा फैलाए, गुरमुख सदा संभाली है। कह नानक वड़दाता, सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उधर मह, तैसी बाहर माया। माया अगन सबिको जेही, करतै खेल रचाया। जात इस भाणा ता जमया, परवार भला पाया। लिख छुटकी लगी तृष्णा, माया मर वरताया। ए माया जितर विसरै, मोह जय भाव दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी, जिन्हां लिव लागी तिन विचे माया पाया। हरे आप मुल कै, मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए। किसै विटह हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जे मिलै, तिसनु सिर सौपिया विचु आप जाए। जिसदा जीव तिस मिल रहे, हर वसै मन आए। हर आप मुल कै भाग तिना के नानका, जिन हर पलै पाए। हरास मेरी मन वणजारा, हरास मेरी मन वणजारा, सतगुर तेरा सजानी। हर हर नित जप्यो जीहो, लाह कट्यो दिहाड़ी। तन तिना मिलिया, जिन हरे आपे भाणा। कह नानक हरास मेरी मन हुआ वणजारा, ए रसना तू अन रस राच रही। तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत कितै। जिचर हर रस पलै न पाए, हर रस पाए पलै पिए। हर रस गौड़ न तृष्णा लागै आए, इहो हर रस करमी पाई है। सतगुर मिलै जिसे आए, कह नानक होर अन रासा विसरे। जा हर वसै मन आए, ए शरीरा मेरे यार, तुम मैं जोत रखीता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विचता, तू जग में आया। हरे आपे माता आपे पिता, जिन जिओ पाए जग दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया, तां चलत होवा चलत नदरी आया। कह नान सिष्ट का मूल रचिया, जोत रखीता तू जग में आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी। गृह बंदर बनिया, हर गाओ मंगल सखिए। सोख दुख न व्यापै, गुर चरण लागे दिन सुभागे। अपना फिर जापै, अनहत बाणी गुर शब्द जानी। हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभा मिलिया। करन कारण जोगो, ए शरीरा मेरिया, इस जग मह आए। कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा। जा तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया। सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया। पूर्व लिखिया पाया, कह नानक शरीर प्रवान हुआ। जिन सतगुर सो चित लाया, ए नित्र मेरे हो। हर तुम मैं जो तरी, हर बिनवर न देखो कोई। हर बिनवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। एह वे संसार तुम देख दे, हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया, जावे का हर कह, हर बिनवर न कोई। कह नानक नितरंत से सतगुर मिलिया, दिव दृष्ट होई। श्रवण हो मेरे हो, सचै सुनै नो पठाए। सचै सुनै नो पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी। जिस सुनी मंतन हरिया, हुआ रसन रस माणी। सचल कविडानी ताकि गत कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, सचै सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रखै, वाजा पवन वजाया।
ਉਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਹਿਨ ਏਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ ਤਿਸਤਾਂਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ ਜੀਉ ਗੁਪੰਦ ਰੱਖੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ ਇਹੋ ਸੱਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਕਰ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸੱਚੈ ਜਿੱਥੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਵਹਿ ਸੱਚੋ ਤੇ ਆਵਹਿ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨ ਬੁਝਾਵੇ ਇਹ ਸਤ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ

बचे शरण जो, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तेरे, जो सरदा कर सिम दे गुर पार उतारन, खंडा जाके हाथ में कलगी सो है,

गुरु गुरी मेज तंत्र जमी सतगुरु जी तंत्र साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दर दी हाजरी पर दिया है बेअंत गुरसिख माई पाई गुरु आप जी दे बाणी सत्कार जो बेअंत माया भेटा कर दिया जिन सर सिखितान प्रसादान चन्ना कमला प्यार बख्शना खजाने पर परकने सो आओ गुरु प्यारी साथ संग जीव कीर्तन दी इनिक सेवा प्रवान करनी हुई भुलां चुका दी खिमा करनी आओ अगले प्रोग्राम सरोण करिए सिख पंथ दे विद्वान सत्कारयोग ज्ञानी गुरमेल सिंह जी टोरंटो कनेडा वाले उन्हां पासों अज दे श्री मुखाक दे विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरोण करिए दस रुपते प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

चरण तपर सकियथ चरण गुर अमर पवालर हाथ तपर सकियथ हाथ लगे गुर अमर पिहि तपर सकियथ जिहि गुर अमर पनिज नैन तपर सकियथ नैन गुर अमर पखिज सकियथ सोहियो जित ही बस गुर अमरदास निज जगत पित सकियथ सो सिर जाल पपणे जो सिर गुर निवै नित कन हर बूंद बसोरो मावल कुसम बसंत गणंत नयावै रासस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र तिहान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बाणी आवै अमै दृष्ट शुभ कर हरै अग पाप सकल मल।

कष्टश्री दादी ले लंकागढ़ उपाड़ी ले रावण बन साल बिसल आन तो खिले हरी कर्म कर कछौटी मफी टसरी।

ही निरंजन कमला पाती। रामा भगत रामानंद जाने, पूरन परमानंद बखाने।

पाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु हुए लखावे। धन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सुवारता। रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया चादन निकाल

जन नानक चले मिलंता, जैत शरी महला चौथा, हीरा लाल अमूलक है पारी, बिन गाहक मीका काखा, रतन गाहक गुर साधु देखे हो, तव रतन विकानो लाख।

मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तू तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण श्री वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर जन बिछड़िया चिरी मिलाना धन धन सतगुरु जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुरबाना जय श्री महला चौथा सतगुरु साजन।

गुर बचनी बिस हर काटे बा, मेरा मन राम नाम रस लागे बा, हर किए पतित पवित्र मिल साध गुर, हर नामै हर रस चाखे बा रहा। धन धन।

गाएगा। तिनके भाग खीन तुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाए बा, ते दूजे पाए पवह ग्रभ जूनी, सब बिरता जन्म तिन जाए बा।

जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उर तार्यो मन माझा, धर्म राय दर कागज पारे, जन नानक लेखा समझा। जैत श्री महला चौथा, सत संगत साध पाई वडभागी, मन चलतौ पहयो अरूड़ा, अनहद धुन वाजह नित वाजे, हर अमृत धार।

हर मिलियो लाई चपीड़ा रहाओ। साकत बंद पे है माया, बिख संचह लाए जकीड़ा। हर कह अर्थ खर्च न साक है, जमकाल सह सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुरु साधु बहु श्रद्धा लाए मुख तूड़ा। हलत पलत हर सोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध गुर, मिल साधु पाखान हरियो मन मूड़ा। जय श्री महला चौथा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरहु अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलाव हो, गुर मिले सुख हो ही राम। हर गुण गाव हो मीत हमारे, हर हर नाम रख हो उरतारे। हर हर अमृत बचन सुनाव हो, गुर मिले प्रगट हो ही राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करहु गुर मिलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुख दाता, हर कै रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख हर मिल, हर हर महापुरख गुर मिलो। गुर नानक नाम सुख होई राम।

हर हर हर जस घूमर पावो, मिल सतसंग उमा हराम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिलो, गुर मिले हर उमा हराम।

संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज धनी भूमन चतुरांगा, संघ न चाल्यो इन मह कछुए ऊठ सिधायु नांगा।

आगे मुख उजल संग संतन कह पाई है। जैत सरी महला पंजवा घर तीजा दुख दे इको अंकार सतगुर प्रसाद देहो संदेशरो कहियो प्रै कहियो विषम भई मैं बहु विद सुनते कहो सुहागन सहियो रहा को कह तू सब बाहर बाहर को कह तू सब महियो वरन दिसै चेह न लखियै सुहागन सात बुझहियो सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं अलपई हो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसई हो। जैत श्री महला पंजवां।

आसा मनसा पूरों जप प्रभु कहो, गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख न कबहू चूरों बुझ प्रभु कहो। जैत शरी महला पंजवा, लोड़िंदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट तिसह बसेरा रहा। सुख आराधन दुख आराधन बिसरै न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा, बिन सह भरम अंधेरा। थान थनंतर सब नी थाई, थान थनंतर सब नी जाई, जो दिसै सो तेरा, संत संग पावै जो नानक, तिस बहुर न हुई है फेरा। जैत शरी महला पंजवा, घर चौथा दुपते एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। अब मैं सुख पायु गुराग्य, तजी सियान पचिंत विसारी, अहंग छोड्यो है त्याग रहाओ, जो देखो तो सगल मोहे मोहियो, तो शरण परयो गुर भाग, कर कृपा टहल हर लायो, तो जम छोड़ी मोरी लाग, तरियो सागर पाव कौ, जो संत भेटे वड भाग, जन नानक सर्व सुख पाई, मोरु हर चरणी चित लाग। जैत श्री महला पंजवा, मन मह सतगुर।

आयो दुख हरण शरण करुणा पत गहु चरण आसरा। नाव रूप भयो साध संग पवनिद पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैत शरी महला पंजवा।

तय सब संग रह अलिपा नह व्यापै उनमाई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई तिनकै संग नानक निस्तरियै जिन रस रस हर गुण गाई जय श्री महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान भू मगन महाप्राणी अंधियारे मह दीप रहाओ सफल

मने चराहो धूप, हार पर्यो तुमरे प्रभु द्वारे, दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक, काट ले हो नानके अपने को, संसार पाव के कूप। जैत श्री महल्ला पंजवा, कोई जन हर स्यों देवे जोर, चरण गहूं बकूं शुभ रसना, दीजह प्राण कोर राव, मन तन निर्मल करत के आरो।

चल लाभ हो। बिखम नदी जाय तरनी, सुख संपत माया रस मीठे, एह नहीं मन मह तरनी। हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत, हर नाम रंग आपरणी। जय श्री महला पंजवा। हर

कोट बिघन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पाओ किछ नाही आदर देवत जाम तज गोपालान जो करनी सोई सोई बिन सतकाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जैत श्री महल्ला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

आओ समझ न परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहन बन कोजन कौतायो रतन राम कट ही के पीतर ताकू ज्ञान न पायो जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जय श्री महला नौवा हरजू राख लिहो पत मेरी जम को त्रास भयो उर अंतर शरण गही कृपा निद तेरी रहाओ महापतित मुग्ध लोभी फुन करत पाप अबहारा पै मरबे को बिसरत नाहिन तेह चिंता तन जारा किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस का उठताया कट ही पीतर बसै निरंजन ताको मर्म न पाया नाहिन गुण नाहिन।

नानक निभ साथ चंत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान तनंतर आप जल थल पूर सोए थान तनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल महिहल पूर रहे आप सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गणी भज सरण स्वामी सुखागामी किस बिना अन नाही कोए बिनवंत नानक दया धारो किस प्राप्त नाम हो इस लोक चित जे

धन नहीं खटिया, उदम करहै अनेक हर नाम न गावही, पर मैं जो न संत मर जन्म है आवई, पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु न आवै, बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावै, रत्न जन्म हार अंत जुवै प्रभ आप न पावही, बिनवंत नानक पर मह परवाई किन एक टिक न पावई, जो बन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपै सिर डोल नैन न दिठिया, नैन दिसै बिन भजन ईसै छोड़ माया चलिया, कहया न मन सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया, श्री राम रंग अपार पूरन नह निमक मन मह बूठिया, बिनवंत नानक कोट कागर बिनस बार न झूठिया, चरण कमल सरनाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया, मिल साध संगे पज श्री धर कर अंक प्रभ जी तारिया, हर मान लिए नाम दिए अवर कछ नाम विचारिया, गुण निदान अपार ठाकुर मन लोड़िंदा पाया, बिनवंत नाम

तही प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखे पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती ते साहिब जी का प्रकाश होया, ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दी संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि ये लहदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो, अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो? कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया का मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तो आपां सारे करदे हां, पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है, दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। ये तो इहो जी बख्शिश हो जाए। पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोग की यात्रा करया करदे सन, तुर पे तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउन दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शना दी इजाजत मंगी, ते नाल कहंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई वी कलगीधर पिता जी वल हाथ वधाए, ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हाथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असीं सारे संसार दे भले लई दोस्त दोखियन फकर पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता, ते बाएं गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार, साड़ी रखिया, साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे, दीन आख दिन जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई, साडे धर्म दे लई
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।

ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे। कहते हैं ऐसे गुरु को सानू बलखार जाना चाहिए है जिसनू नारायण नरपत नमस्कार। सारा ब्रह्मंड उसनू नमस्कार करता है, उसनू पूजता है, उसका ध्यान करता है। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह अपने इस पावन शब्द राही सानू समझाना करते हैं कि भाई जी की बिरथा होए सो गुरु पहे अरदास कर। जद भी कोई गल हो तेरे मन दे अंदर तू गुरु दे कोल आके बैठ के उस अगे अरदास करनी है। वो इना समर्थ है कि तेरे मन दी बुझ के ते मन दी पूरी भी कर देगा। सो ऐसे गुरु तू अपन बलखार जाना चाहिए है आप मुक्त मोहित।

0: प्यारे गुरुस्वारी साध संगत जी, इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करना, शब्द बाणी पढ़दियां होईयां भुलां दे खिमा करना जी। अज जिसने पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश दिहाड़ी मनाई जा रहे हैं, सो आप जी सर्व संगतां नूं महाराज जी के प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाईयां होवन जी। आओ हुण अगला समां सरवण करदे हां। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। हमें का जगत में आयो, तरन हेत को दे पठायो। हमें का जगत में आए, तरन हेत को दे पठाए। जहां तहां तुम तरन बिसारो, दुष्ट दोखियन फकर पिछारो। यह काज सरा हम जन्मन, समझ लो साधु सब मनमन। तरन चलावन संत वारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन।